सद पाई गए विश्राम, जित कर हर कंत ना प्रगटई, पट नगर से ग्राम, सब सीकार तमूल रस, सन देही सब खाम, प्रभु स्वामी कंत विहूनिया, मीत सजन सब जाम, नानक की बेनंतिया, कर कृपा दी जे नाम, हर मिलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल ताम, चेत गोविंद आराधी है, होवे आनंद कणा, संत जना मिल पाई है, रसना नाम पणा, जिन पाया प्रवे अपना, आयत से गणा, एक खेन से बन जीवना, बिरथा जन्म जना, जल थाल मही जल पूरिया, रवे आवे चवना, तो प्रभु चेतन आवई, कितड़ा दुख गणा, जिन्नी रावया सो प्रभु, तिन्ना पाग मना, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, चेत मलाए सो प्रभु, जिसके पाए लगा, वैसा तीर्ण क्यों वांडिया, जिन्ना प्रेम शोह, हर साजन पुरख सार के लगी माया तोह, पुत्र कलतर ना संग तना, हर अवनासी ओह, पलच पलच सगली मुई, टूठे तंदे मोह, एक सगर के ना बेन, अगे लिये खोहे, दयो विसार गुचना, प्रभन अवरना कोए, प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्राबेंती, प्रामिलो प्राप्त होए, वह सार सुहावा ता लगे, जहां संत फेटे घर सोए, हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, अगे सब निवन, हर सज्जन दामन लगिया, किसे ना देई बन, माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे ना ही सन, रंग सवे नारायण, जिते मन पावन, जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने, से ही कहिए तन, आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ते, नानक रंग माणन, हर जेठ रंगीला तिस तनी, जिके पाग मथन, आषाढ़ पंदा तिस लगे, हर नहो न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संदियास, दोए पाए विगुचिए, गल पैसो जम की फास, जिहा बीजे सोलने, मथे जो लिखे आस, रैन विखाणी पछताणी, उठ चली गई निरास, जिन को साधु पेटी है, तो दर गए होए कलास, कर कृपा प्रभु अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास, प्राभ तो बिन दूजा को रही, नानक की अरदास, आसार सुहंदा तिस लगे, जिस मन घर चरण निवास, सावन सरसी कामणी, चरण कवन स्यों प्यार, मन तारता सच रंग, इको नाम आधार, विख्या रंग कूड़ा वया, दिसन सबे शार, हर अमृत मूं सुहामणी, मिल साधु पी मनगार, वाण तिन प्रसंग मोलिया, समर्थ पुरखे पार, हर मिलने नू मन लोचदा, कर्म मिलावन हार, जिन्नी सगिए प्रपाया, हाउ तन के सदबिरेगार, नान खरजी मयाकार, शब्द सुवार नहार, कामन तिना सुहागणी, जिन राम नाम उर हार, भादोए परम भुलाणिया, दूजे लगा हेत, लगसीगार बनाया, काज नाही केत, जित दिन दे बिनसी, चित वेले कैसन प्रेत, पगड़ चलायन दूत जाम, किसे ना दे नी पेत, छड़ खड़ोते खिने माघे, जिसो लगा हेत, हाथ मरोड़े तन कपे, स्याह हो वासेत, जेगा बीजे सोलुने, कर्मासन डा खेत, नानक प्रसरणागति, चरण भोज प्रदेत, से भादोए नरक ना पाई है, गुर रखन वाला हेत, असुन प्रेम उमाड़ा, क्यों मिल गए घर जाए, तन प्यास, दर्शन कणी, कोई आन मिला वे माए, संत सहाई प्रेम के, हों तिनके लागा पाए, बिन प्रक्यों सुख पाई है, दूजी ना ही जाए, जिनी चाख्या प्रेम रस, से तृप्त रहे आगहाए, आप त्याग बिनती करे, ल्यो प्रभु लड़लाए, जो हर कंत मलाइया, से विछड़ कते ना जाए, पावन दूजा को नहीं, नान खर शरणाए, असु सुखी बसंदिया, जिन्ना मया हर राय, कत्यक कर्म कुमामने, दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते पुलिया, व्यापन सबे रोग, वे मुख हो ए राम ते, लगन जन्म वे जोग, खिर में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग, विच ना कोई कर सके, इस तैरो वे रोज, कीता किशु ना हो वई, लिखिया तुर संजोग, वड़पागी मेरा प्रभ मिले, ता उतरे सब वियोग, नानक को प्रभ राख ले गे, मेरे साहेब बंदी मोच, कत्यक हो वे सार संग, बिनसे सबे सोच, मंगे रमाए सुहंदिया, हर प्रसंग बैठड़िया हां, तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहेब मिल लड़िया हां,
तन मन मोलिया राम सिंह संग सा से लड़िया हां ता जना ते भारी से रहन अकेल लड़िया हां इन दुख न कभू उतरे से जम के वस पड़िया हां जिनी रावे प्रवे अपना से जिस नित खड़िया हां रतन जवेर लाल हर कणतना जड़िया हां नारक बांछे तूड़ते प्रसरणी दर पड़िया हां मंगिर प्रभ आराधना बौड़ना जन्मड़िया हां पोग तुखार ना व्यापई कंट मिलिया फर ना हो मन विद्या चिरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो ओड़ गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो बिख्या कोई न सकई मिल साधु गुण गाहो जैते उबजी तै मिली सच्ची प्री समाहो अरगैली नी पार ब्रह्म बौड़ना बिछड़िया हो बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाहो सर्व पई नारायण नानक दर पईया हो ओग सुहंदा सर्व सुख जे बगसे वे प्रवाह हो माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान हरका नाम ते आए सुन सबना नु कर दान जन्म कर्म मल उतर है मनते जाए गुमान काम क्रोध नाम होई है बिनसे लोग सुवान सच्चे मार्ग चलदया पुस्त करे जहान अड़सड़ तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिन्ना मिलिया प्रवे अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कंडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फालगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रटे आए संत सहाई राम के हर कृपा दिया मिलाए से सुहावी सर्व सुख हुन दुखा ना ही जाए इस पुनी वड़ फागनी वर पाया हर राय मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जे अवर ना दिसई कोई दूजा लभे न लाए फलत पलत सवार यून नेचल दितियन जाए संसार सागर ते रखियन बौड़ ना जन्मे ताए जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण ने तसराई है जिसनु तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखानंद चरण हर भौजल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रसेम दे मन अंदर एक तरे महादिवस मूर्त पले जिसको नजर करे नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे माज महला पंजवां दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी देन सब रैन आप त्याग सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मिलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुखना वसन पैन हर पिर बिन चैन ना पाईए खोज उठे सब गैन आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देन पर कृपा प्रवरा

दिन रहन जे प्रभु कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन ससद सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अन जिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहण ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसरै सो हरिया हो वै जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर है जप जप जीवान आओ कर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राखै त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिए नान क्यों सुआओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद हरड़ा सुया की तुनी।

प्रीत होवे अन्न खाए, गुरसिख प्रीत गुरमिल आघाए, हर दर्शन देओ हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बचरे प्रीत खीर मुख खाए, हिरदे बिगसे देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सा प्रीत माया मुख काचा, बिन सजाए पूरा कज पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा। गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख

था, जिस मिले मन होए आनंद, तो सतगुर कही है मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद लही है मेरा सतगुर प्यारा किरद मिले, हौ खिरखन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा को मिले रखाओ, हर कृपा हर मिलया मेरा सतगुर पूरा, इश पुनी जन केरिया लिस गुर तूरा, हर भगत रड़ावे हर भगत सुने तिस।

दया करो घर दर्श दिखाओ, मेरे मन तन लोच कन्हेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन घर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचित गुर कीनी, हर मिलिया अयपा मेरी हरहाओ, जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम घर जानो मेरी, अनदन नाम जपी सुख पाई, निर्जीवा आस घर तेरी, गौर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया अयपा मेरी, अनदन अंध पया बड़ भागी,

दैद चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गंडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडाहे पर साधु अंजलि पुन वडाहे का डंडौत पुन वडाहे रहाओ सागत हारा साध ना जानिया तिन अंतर होमे कंडाहे ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पावे जमकार सहे सिर डंडाहे हर जन घर घर नाम सुमाने दुख जन मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मस्कीन प्रातेरे हर राख राख वड़ वड़ा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा हे गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है।

और अगमे को तिर पार ब्रह्म है मिले सदगुरु लाग बसीठा जिन गुर भजन सुखा ने ही अरे तिन आगे आन परीठा मानमुख हीरा अत कठोर है तिन अंतरकार करीठा बिशीर कौब दूध पियाये बिघ निगसे फोल फुलीठा हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु कास गरड़ सदमुख लीठा या नान गुर के लाले गोले लाग संगत तरुआ मीठा गौड़ी पूर भी महला चौथा हर अर श्री हम बेतिया पूरे गुर के आगे सदगुर दाते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पार सुखागे आराम गुरमत घर लिव लागे रखाओ धड़कर मैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागे हो मन तन देवो काड़ गुरु को मेरा प्रम पौ गुर बचनी भागे अंधेरे दीप के आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिरस बनासो कर वस्तल ही मन जागे साकत बद्ध कमाया तारी तेन जम जो हुन लागे हुन सतगुर आगे शीस ना बेतिया आवे जाए अपागे हमरा बिनो स्वरूप ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लजपात गुरु है सिर बेत्यो सतगुर आगे गौड़ी पूर्वी महला चौथा आम अहंकारी अहंकार ज्ञान मत गुर मिले आप गुवाया।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमतरा मरसायण जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाप अनेक भो तेरे फिर कृपा नाम न पावे। जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम करामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजरमा। वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड़भागी मिल सूड़ सुजानी जियो। मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संतां अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामन करी खा जियो। मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो। पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो। हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो। मेरे मंत्र प्रेम लगा हर टोले जियो। मैं मेले मित्र

है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुझे करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। ता गुरते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त स्वर्ग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवां, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए

आनंद विचार रसना सोई लो मीठे साध मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे सावत वस्तु अपनी लय रहाओ सकल सहेली अपने रसमाती गए अपने की खबर न जाती। मुस्तनहार पंच बटवारे तूने नगर परे ठगहारे उनते राखे बाप न माई उनते राखे मीत न पाई। सर्व सियाणप ना ओए रहते साध संग ओए दुष्टवास होते हर कृपा मुझ सारंग पान तंतन तूर सरबनधान साध पूजनी सदगुर संग नानक जाग पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेश सुखी हो रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुखदाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रखाओ जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

जाको रास हारस आयो तो अनस नहीं लपटायो। जाका कहया दरगह चले सो किसको नदर ले आवे तले। जाका सब कुछ ताका होए नानक ताको सदा सुख होए। गौड़ी मोहल्ला पंजवा जाक दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा काम ब्यापे। तेज आनंद घर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय हराओ। जाके चिंत बसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे। जाके बिन सो मन ते परमा ताके कछु नाही डर जमा।

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतर्जामी, समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा। माधव जाको है आज तुम्हारी, ताको कछ

योग हर के मार्ग पद पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करनहार सदवसे हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी मोहल्ला पंजवां संत की तूर मिटे अकोट संत प्रसाद जनमन ते चोट संत का दर्श पूर्ण इसनान संत कृपा ते जपिए नाम रखाओ संत के संग मिटिया अहंकार दृढ़ आवे सब एक अंकार संसो प्रसन्न आई बस पंचा।

स्वामी सबगे तुम ते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुगन बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवां ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जन माघे ताके संग केल विख दुख जाहे जन की महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्र बिनो सुनीजे दास की तूर नान को दीजे गौड़ी मोहल्ला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जद का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिव लागी।

उठत सोवत हर संग पैरुआ जाके सिमरन जम नि डरुआ रखाओ चरण कम प्रदे निवास सगल दुखा हो या नास आसा मान तान तन एक सच ऐसा की मन में टेक मां गरीबिन साध अनाथ नान प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर घर नाम अजन कर सूचे कोर ग्रहण पुन फल मूचे रखाओ हर के चरण हृदय मैं बसते जन्म जन्म के किल

सोपाया मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम हस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेट। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना चूरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी जिया कोत न संगे प्राणी।

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर संगराते पाए ना जले, हर संगराते माया नहीं चले, हर संगराते नहीं डूबे जला, हर संगराते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संगराते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

पार ब्रह्म रंग राते छोग सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर न दाते जगते उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ताके चरण परोता जीवा चरके संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राजोबन अब जो दिस सबके जुग में काटिया नाम दान सर नपन निर्मल यो नान खर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जो सुन आयो गुरते मोको सब गुर शब्द बुझायो रघाव नौखण पृथ्वी तन में रविया निमख निमख नमस्कारा दीख्या गुर की मुंदरा कानी दृढ़ एक निरंकारा।

शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचर को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर की।

आदो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सब विद बन आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुण गावो। मानस जन्म अमोल पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह माया पुन, भजन राम चित ला को माई। उल्लेओ मन समझाए, वेद पुराण साध मग सुनकर। निमखन हर गुण गावे रखाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की। बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान। तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो। जे कड राम सुमावे, गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण। सिमरे हर को नमा रखाओ, लोभ वो माया ममता फोन। आओ विघन की सेवा, हरक सोग परसे दे नाहन। सो मूर्त है देवा, स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब। क्यों कंचन अर पैसा, पुस्तक निंदा ए समझा के। लोभ मोह हुन तैसा, दुख सुख ए बादे जे नाहन। हे तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताए तुम मानो। हे बद को जो प्राणी, गौड़ी महला नावा। मान रे कहाँ पयो तय बौरा, आहे इन औद कटे नहीं जाने। पयो लोभ संग हौरा, रहाओ जो तान तय अपनो कर मान्यो। हर सुंदर गृह नारी, इन में काश तेरो रे नाहन। देखो सोच बिचारी, रतन जन्म अपनो तय हारियो। गोविंद गित नहीं जानी, निमखना लीन पयो चरणन स्यों। बिरथा औद सिरानी, कहो नानक सोई नर सुहिया। राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया। निर्भय पद नहीं पावे, गौड़ी महला नावा। नर अचेत पावते डार रे, दीन दयाल सगल पय पंजन। शरण ताए तुम पर रे, रहाओ वेद पुराण जस गुण गावत। ताको नाम ही ये मोह तार रे, पावन नाम जगत में हर को। सेमर सेमर कसमल सब हर रे, मानस दे भौर न पावे। कछु उपाव मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करना।

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूरया बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिये आई कार, इन बिग राम रमत मन मान्या, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या रखाओ, एक सुख मान्या सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पै सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यों लागया, हरा संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पो पागया, साध रहे बादंग अहंकारा, चित हर स्यों राता हुकुम अपारा, जा

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त इकनाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एक हुकुम वरते सब लोई, एक ते सब ओपत होई, रहा दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुकुम पछान, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचार है, पंच मार साच उरथार है रहाओ, जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, रस एको गृह उद्यान, करणी कीर्त कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सज जाग, पाए रच रहे न बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, होमे मारे करणी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, खेमा गई व्रतशील संतोखं, रोग न व्यापे ना जम दुखं, मुक्त पय प्रारूप न रेखं, जोगी कौ कैसा डर होए, रूख बिरख गे

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल भय उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख।

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, रैयत मैर मुकदम सिगदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अभरो काल कूल सिर मारे, निचल एक सच्चा ससोई, जिन कर साजी तिने सब गोई, ओ गुरमुख जापे ता पद होई, काजी सेख पेह फकीरा, वड्डे कहावे होमे तन पीरा, काल ना छोडे बिन सतगुर की तीरा, काल जल जेवा अरनैणी, कानी काल सुने बिखबैणी, बिन शब्दे मूठे दिन रैणी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल ना जोए सके गुण गाए, नानक गुरमुख सब सुमाए, गौड़ी महला पहला, बोले साज मिथ्या नीराई, चाले गुरमुख हुकम मर जाई, रहे अतीत सच्चे सरनाई, सत कर बैसे काल ना जोह, मनमुख आवत जावत दुख मोह, रहाओ आप्यो पियो अकथ कथ रहिए, निर कर बैस सहज कर लइए, हस माते उस कहिए, गुरमत चाल निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज कर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दिखिया लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सजो त्यो पार, जय देखो है एक अंकार, रहे निरालम एक असर करणी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी, मन ते मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, एन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निचल महल निशाया माया, शासन तोखे परम चुकाया, जिनके मन मसिया ससोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच ना मलख होई, गौड़ी महला पहला, राम नाम चित्रा पे जाका, उपजंब दर्शन की जे ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, तेत काट अनहद बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, हे प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर घर सोई, तिनका दर्श परस होई, सर्व जिया में एको रवे, मर्म अहंकारी फिर जूनी पवे, सो बुझे जो सदगुर पाए, होमे मारे गुर सब दे पाए, अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण कौ गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोले अष्टपदियां गुवारे री गौड़ी पिया, गौड़ी बैरागण महला पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली, रखे कर सारा, अहंस पाले राख ले, आत्म सुख तारा, एत्युत राखो दीन दयाला, तौ शरणागत नजर निहाला, रहाओ जय देखो तय राग रहे, रख रख नहारा, तू दाता पुता तू है, तू प्राण आधारा, किरत पया अध ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा, बिन उपमा जगदीश की, बिन सेना अंधेहारा, जग बिरसत हम देखया, लोभे अहंकारा, गुरसेवा प्रापाया, सच मुक्त द्वारा, निकर मैल अपार को, अपरंपर सोई, बिन शब्दे थिर को नहीं, बूझे सुख होई, क्या ले आया, ले जाए क्या, फसे जमजाला, डोल बदा का जेवरी, आकाश पताला, गुरमत नाम ना विसर है, सहजे पद पाई है, अंतर शब्द निधान है, मिले आप गवाई है, नजर करे प्रवे अपनी, गुण अंक समावे, नानक मेल ना चूकई, लहा सद पावे, गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा, घर कर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द ना छूटी है, देखो विचारा, जेला कर्म कुमार ही, बिन गुर अंधेरा रखाओ, अंधे अकली बारे, क्या तिनसो कही है, बिन गुर पंथ ना सूझई, केत विद निर्भई है, खोटे को खरा कहे, खरे सार न जाने, अंधे का न हो पारखू, कली काल विडाने, सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नी रोता, आपत को जाता कहे, जाते को आया,

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहयो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहयो।

बिन उरतारे ना बिन करवास नाही। पुछो सखी सहेलियां बिन ना प्रीत प्यार नाही। वसै साच सुहेलिया सच मान सज्जन संतोख मेला। गुरमती सौ जानिया नानक नाम न छोड़ै सा तन। नाम सहज समाणिया मिल सखी सहेलड़ी हो। हम पिर रावेगा गुर पुछ लिखोगी जियो। शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया। मनमुखी पछताणिया निस जातो रहे अस्थिर। जाम सच पछाणिया साज की मत सदा नौतन। शब्द नेहो नवेलो नानक न

सुबाज वखर कोई ना सूझे, नाम लेवो खेन खेनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरे सज पाया।

मारे हो में मारे इन बद मेरो प्यारे सातन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर पाया सगले दुख विसारे कामन पिरों भुली जियो माया मोए प्यारे झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे कूड़ निवारे गुरमत सारे जुए जन्म नहारे गुर सब

भावे अन न पानी, पानी अन न भावे, मरिए भावे, बिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, जो मिले तवे मिलाईए, आपे मिल ले सुखदाता, आ मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना तिर मरे न जाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, कामन हर रस वेदी जियो, हर के सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज सुमाए, दुबदा सहज सुमाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, यो शरीर कूड़ कुसत भरिया, गलताई पाप कुमाए, गुरमुख भगत जित सहत उपजय।

जानी। मात पिता सब भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी, गात नहीं जानी। हमें ताज संसारे, जो आया सो सब को जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे।

सखा हर जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे उड़ीनिया तर करे सेवा शीश चरणी मन आस दर्शन मानिया सास सास ना कड़ी विसर पल मुहूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन आपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखम आपे अस्थूला।

पितर कर पातो ज्ञानी सोए जाके गिरड़ सोउ कैत सोंत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सब ताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पद ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन वासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रव्याप्त।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चले सब कोए ताको मात पिता सो धिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपट तरहे आहो आवे जाए टहे तो टहे अब टहे परे साजना सरनाए दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा हो अणा तू अणा छुटे निट न जाइयो दूत पौड़ी नाणारण ते सीजिए आत्म जीते कोए होमे अनसो लार मरे तो सोभा दू होए मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश मनुआ जीते हर मिले ते सूरत तनवेश अणा को जाने अपनो एक टेक आधार रैन दिनस सिमरत रहे ओपरा पुरखे पार रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तान मन तान अर्पो तिसे।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया।

पौड़ी अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटे संग साधु कर्म धर्म तत नाम अराधु रूड़ो जे बस्यो रिदमाही ओआ की अड़ाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत सागत गावारा जे ही ये अंग बुद्ध विकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माए नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उगत सियान पत्याग गुर दीख्या दे मन बसे नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन परे अभारे शास्त्र सिमरत वेद बुकारे सोधत सोधत सोध विचारा बिन घर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत स्यानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा स्यानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताक।

पौड़ी फेरव कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान पोवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हितकर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत किरपाला और

हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त पुत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

सह सुभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी कै नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊज ते ऊचा मन अपने गए सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सदा समंदरसी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपरयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी परे उपकार माह ब्रह्मज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी कै हो सो पला ब्रह्मज्ञानी सोबल पला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्मज्ञानी कै बसे प्रसंग ब्रह्मज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्मज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी का सगल मन मागे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सबसठ का करता ब्रह्मज्ञानी सजीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक को अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूपना पेखे नेतर साध की टहल संत संग हेत करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद दिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्रीजित पंच दुख ते रहत नानक कोड मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होए पिन कर्म करत होवे ने कर्म इस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग रचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शोध राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कह उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सूख में जाने अस्तूल
ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਚੌਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੇ ਕੋ ਨਾਮ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਤਾਰ, ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਥਰ ਕੌ ਤਾਰ। ਸਰਬ

प्रवते हुए ब्रह्म है सुमात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदसदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुग सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जोत पावे सोई होग खिन में था था पनहार अंत नहीं किस पारावार हुक्मे तार अतार रखावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ पावे मानुख गद पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे प्रभ पावे बिन सास ते रख प्रभ पावे ता हर गुण पख प्रभ पावे ता पतत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप स्वामी खेले बिगसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुख ते क्या होए आवे जो तु पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तु पावे सोई करे अनजानत दिखिया में रटे जे जानत अपने आप बचे परमे पूला दे दितावे निवक मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घड़ घड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करावन सर्व।

गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाहीं मोह, प्रभु की जोत सगल कड़ सोह, तनवंता होए क्या को गर्भ है।

मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे पूर्ण।

कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृटाया नाम तन नमो रूप रंग नमो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमान।

ना संग्रह नामे लिवलाव ग्रहो तन साब पवित्र होए हर के गुण गाव हर नाम व्यापारी नानका वडभागी पाव पौड़ी जो तु पावे सो भला सच तेरा पाना तू सब मैं एक वर्तदा सब मैं सुमाना सांसनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाना नानक प्रसरणागति साध सद कुरबाना सरोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहेब सच्चा सो तनी नानक सदगुर सेव चढ़ बोहित पौजल पार पाओ महला पंजवा वाऊ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार नानक नाल ना चलनी जल बल हो।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब केश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रहे ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नाव जपंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना काणी मस्तक हो वे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी

कार बंदो सज धर्म का गढ़ थम अहल ओट लयो नारायण दीन दुनिया चल नानक पकड़े चरण हार तेस दर गए मल सलोक महला पंजवा जाजक मंगे दान दे प्यारे देवन हार दातार मैं नित चितारे निखुट न जाई मूल अतुल भंडारे नानक शब्द अपार तेन सब किश सारे महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने जमके पंथ न पाई है फिर ना ही मरने जिसनु आया प्रेम रस तिस ही जरने बाणी उचर है साध जान अम्यो चल है चरणे पेख दर्शन नानक जीवया मन अंदर तरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे है।

जे सिमरता संकट छुट है अंध मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर निमख ना बिसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लद्दा साधा सरणी जो पवे सो छुट्टे बद्दा गुण गावे अवनासीए जोन गर्भ ना दद्दा गुर पेटिया पार ब्रह्महार पाड़ बुझ समद्दा।

जो बीजे सोखाए तिसे प्राप्त नानका, जिसनु लिखिया आए महला पंजवा, मंगना ता सच एक, जिस तुल देवे आप, जित खादे मन तृप्ति है, नानक साहेब दात पौड़ी, लहा जग में से खटे, जिन हर तन रास, दुतिया पाओ ना जाननी, सच्चे दी आस, नेचल एक सरेवया, होर सब विनाश, पार ब्रह्म जिस विसरे,

तंदड़े कुलाह कितने आवे हेकड़ो, नानक से ही तन फुटन जिन्ना साई विसरे महला पंजवा, प्रेतो की तोन देवता तिन करने हारे, सबे सिख उबारेन प्रभु का सुवारे, निंदक पकड़ पछाड़ेन झूठे दरबारे, नानक का प्रावड़ा है आप साज सुवारे पौड़ी, प्रभ बेअंत किस अंत ना है, तब तिसे करना अगम्य गोचर साहेब, जिया का परना हस्तदे प्रतपाल दा परण पोखण करना, मेहरवान भगसिंदे आप

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए, जे पावक सुर न रह जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पाव सागर सुसागर माही, पीवरे जल निखुड़त नाही, कहे कबीर पज सार्ग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी, गौड़ी कबीर जी माधव जल की प्यास न जाए, जल में

आप मोहे मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्मा किए बहुरंगा ऐसे कार हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हो आए रघाव योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

हर हर बास सुगंध बसाई तहर कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब तंदा गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके जम ते उल्ट पए गए राम दुख बिन से सो कियो विश्राम बैरी उल्ट पए गए मीता सागत उल्ट सुजन पै चीता अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया साध पई जब गोबिंद जाने आ रहा तन मैं होती कोड उपाध उल्ट पई सो सहज समाध आप शाने आपे आप रोग ना व्याप तीनों ताप अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समाव आप ना डरो ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता शब्द अतीत अनाह दराता जिन राम जानिया तिने पछानिया ज्यो गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथे बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जे बौर ना करना सो पद रवो जे बौर ना रवना सो त्यान तरो जे बौर ना तरना ऐसे मरो जे बौर ना मरना उल्टी गंगा जमन मिलावो बिन जल संगम मन में नावो।

मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। संकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तां छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी अहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम ना पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज, लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जान पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर दूर।

नारी या तत्लो शरीर बिचारी कहे कबीर ठग सो मन मानिया गई ठगौरी ठग पहचानिया आ मोको पए राजा राम सुहाई जन्म मरण कट परम गद पाई रहाओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छिड़ाए अमृत नाम जपो जब रसना अमोल दास कर लीनो अपना सदगुर कीनो पर पुकार काढ लीन सागर संसार चरण कमल स्यो लागी प्रीत गोविंद बस निता नदचीत माया तप्त बुझिया अंग्यार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दरड़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल के सूतक थल के सूतक सूतक ओपत होई जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक सूतक परज बगोई कौरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रगाओ नयनो सूतक बयनो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परे रसोई फासन की बेद साव को जाने छूटन की एक कोई कहे कबीर आराम हृदय बेचारे सूतक तिने न होई गौड़ी झगड़ा एक नबे रहो राम जो तुम अपने जन सो काम रहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया राम बड़ा कह रामे जानिया ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया वेद बड़ा के जाते आया कहे कबीर हो पया उदास तीर्थ बड़ा के हर का दास अराग गौड़ी चेती देखो पाई ज्ञान की आई आंधी सवे उड़ानी प्रम की टाटी रहे ना माया बांधी रहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी मोह बलेंडा टूटा तिसना शान परी तारी ऊपर दुर्मद पांडा फूटा आंधी पाचे जो जल बरख ते तेरा जन पीना कहे कबीर मन पया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर जस सुने।

आपन कया ना लेगी। सरजियो काटे निर्जियो पूजे अंतकाल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। कैत कबीर अकुल नहीं चेतया बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवित मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन सुमाया। अंजन माये नरंजन रहिए बौड़ ना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बुलोइए गुरमत मनुआ अस्त्र राखो। इन बिद अमृत पीओई है रघाओ। गुर के बाण बज्र कलशेदी प्रगटिया पद परगासा। सगत अंधेर जेवड़ी प्रचूका निचल शिव करबासा। तेन बिन बाणे तनख चढ़ाइए यो जग बेद्या पाई। दहज बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन सुमाना दुबदा दुर्मत पागी। कहो कबीर अनपो एक देखेया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन टेप दे उल्टद पावन चक्कर खट पेदे। सुरत सुन अनरागी आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मान मन ही उल्ट सुमाना गुर प्रसाद अगल पई अवर ना तरथा बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानिया। अलौती का जैसे पया बरेडा जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है ऐसा कोए बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी। गौड़ी ते पावस सिंध तूप नहीं सहिया ते उत्पत परलो नाही। जीवन मृत ना दो सुब्याप सुन समाध दो ते नाही। सहज की अकथ कथा है।

मैं पम समाया झूठा प्रपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कहे कबीर एक नीव सारी खिन मैं बिलस जाए अंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चुग गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारंग पानी उरवार पार्षद एको दानी गौड़ी नावी जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रगाओ गर्भ जोंग में उर तब करता तो जठर अग्न में रहता लगत उरासी जोन प्रमे आयो अब के शुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पर सार्ग पानी आर्त जी से जात न जानी गौड़ी पूर्वी सुर्गबाज ना बाची है डरके नरक निवास होना है सो होई है मने न की जे आस रमैया गुण गाइये जाते पाइये परमन धान रखाओ क्या जप क्या तव संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जूत न जानिए पाओ भगत भगवान संपे देख न हरखिए विपत देख न रोए जो संपे त्यो विपत है विद ने रचिया सो होए कहे कबीर अब जानिया संतन हृदय मजार सेवक सो सेवा पले जे कड़ बसे मुरार गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं खिंच ले जिन पार बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और रखाओ और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रखाए जो उपजे सो बिनस है तो का रोवे बलाए जय की उपजी तै रची पीवत मर्दन लाग तय कबीर किद चेतया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा और ना पीजे पग ना खिसे हर दर्शन की आसा उड़ो ना कागा कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो कहे कबीर जीवन पद कारण हर की पगत करीजे एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजे राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कण तुरसी का बिरवा माज बनारस गाऊ रे हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे तुहे चरण मन लागो सारंग तार सो मिले जो बड़ भागो रघाओ बिंद्राबान महरन मनोर कृष्ण चिरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारंग तार मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी पूर्वी बारहवीं बिपल बस्तर केते है पैरे क्या मन बदे बस कहा पया नर देवा धोखे क्या जल बोरो ज्ञाता जियरे जाएगा मैं जाना आगत समझ ए आना जब जब देखो बौर ना पेखो संग माया लपटाना रगाओ ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी ये जग सुग लो तंडा कहे कबीर एक राम नाम बेन या जग माया अंधा गौड़ी बारहवीं मारे छाडो परम पट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डर पे सती के सांचे फांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद पाइये लीनो हाथ सुंधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या फिर जगत बिगूता कहे कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर न करत विचार तुही दरिया तुही करिया तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी एक तैयार साहिब रोस तरो के प्यार रहो नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार कहे कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मार गौड़ी लग चौरासी जी जोन में प्रमत नंद बोथा कोरे भगत हेत अवतार लियो होए आग बड़ो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दस नाही तब यो नंद कहां थोरे रहाओ।
संकट नहीं परे, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे, गौड़ी

उठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माए हमारा चीत निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तारन राम राया हरहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतियाही जब बुध होती तब बल कैसा अब बुध बल ना खटाई कहे कबीर बुध हर ली मेरी बुध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई अब मान जागत हो रे पाई गाफल हुए के जन्म गवायो चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तो ले प्रगास उजारा नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई कैद कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना थे सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणाना रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में त्यानाना बिखे रोग पय बंधन पग मन निज कर सुख जानाना एक सुमतरत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आनाना चंद्र बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब मानाना जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थानाना ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथानाना काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक सुमानाना कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरहे मन मानाना राग गौड़ी पूर्वी बावन अखरी कबीर जियो की एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद बामन अक्षर लो त्रय साब कस इन ही मागे ए अखर खिर जाएंगे ओए अखर इन मैं नागे जा बोलते अक्षर आवा जय अबोल तय मन ना रखावा बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लखे ना कोई अले लहो तो क्या कहो होता को उपकार बड़क बीज मैं रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार अले लहंता पेद शय कश कह पायो पेद उल्ट पेद मन पेद्यो पायो अपंग अछेद तुर्क तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कशुक पढ़िए ज्ञान ओंकार आद मैं जाना लिखर मेटे ताए न माना ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई कक्का किरण कमल में पावा सद विकास संपट नहीं आवा आर देता कुछ मरस पावा आके कहा कह का समझावा खखा ए खोड़ मन आवा खोड़े शाड़ ना दैद स्तावा खसमे जान खिमा का रहे तो होए नख्याओ अखय पदल है गग्गा गुर के भजन पछाना दूजी बात न तरई काना रहे बेहंगम कते ना जाई आगह गहे गह गगन रखाई तग्गा काट काट निमसे सोई काट फूटे कट कभे न होई ता कट माहे।

परमस्यान एह चचा रचत चित्र है पारी ता चित्र चेतो चितकारी चित्र विचित्र ए अवचेरा ता चित्र चित राख चितेरा छशा ए शत्रपद पास छग के न रहो छड़ के न आस रे मान मैं तो शिन शिन समझावा ताहे छाड़ कद आ बंधावा जज्जा जौ तन जीवत जिरावे जोबन जार चुगत सो पावे तस जार पर जार जर जबर है तब जय जोत उजार हो लय जज्जा उर्ज सुज नहीं जाना रहो चलक नाही परवाना कात चग चग और समझावा चगर किए चगर होगी पावा न्यन्या निड जो कट रहे हो दूर कहाँ त जाए जा कारण जग टूडे हो नेरो पायो ताहे टट्टा बिगट काट कट माही खोल कपाट मैल के ना जागी देह अटल टल कते न जावा रहे लपट काट पर चोपावा ठट्ठा ए दूर ठग नीरा नीठ नीठ मन की या तीरा जिन ठग ठग गया सगल जखावा सो ठग ठग गया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मैं डरया सुमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे निडर हुआ डर और होए पागे टड्डा टेग टूंडे कतियाना टूंड ही टह गए पुराना चढ़ सुमेर टूंड जवे आवा जे गड़गड़े सो गड़ में पावा नाना ता रूतो नर नेही करे ना निवे ना फुन संचरे तन जन्म ताही को गणे मारे एक ता जाए खणे तत्ता अतार तरे हो न जाई तन तिरपाउन में रहो सुमाई जो तिरपावन तन माए सुमावा तो तत्ते तत् मिलिया सुज पावा थत्ता अथा था नहीं पावा ओ अथा क्यों थिर ना रखावा थोड़े थाल थानक आरंभ बिनगी थंबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सुनहारा जस अदेख तजराक बिचारा दसवें द्वार ऊंची जब दीजे तौ दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्धे उर्द नुबेरा अर्धे उर्दे मंज बसेरा अर्धे शाड़ उर्द जो आवा तो अर्धे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निर दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जब जय पावा तब ले निरखे निरख मिलावा पापा अपर पार नहीं पावा परम ज्योसो पर चोलावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरई पप्पा बिन फूले फल होई ता फल पंक लखे जो कोई दून न परई पंक बिचारे ता फल पंक सबे तन पारे बब्बा बिंदे बिंद मिलावा बिंदे बिंद न बिछर न पावा बंदो होए बंद भी गए बंदक होए बंद सुध लहे पब्बा फेदे पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा जो पार सो पीतर जानिया पया पेद पौत पहचानिया मम्मा मूल गया मन माने मरमी हो सो मन को जाने मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे मम्मा मन स्यो काज है मन सदे सिद्ध होए मन ही मन स्यो कहे कबीरा मनसा मिलिया ना कोए यो मन शक्ति यो मन सीयो यो मन पंच तत् को जियो यो मन ले जो और मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे यहीया जो जाने तो दुर्मत हान कार बस काया गाओ रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया ओए निरस सोरस पहचानिया हे रस छाडे ओरस आवा ओरस पिया हे रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मन लावे अंत न जाए परम सज पावे अर जो तहा प्रेम लेव लावे तो अले लहे ले चरण सुमावे ववा बार बार विष्णु सुमार न आवेगार बाल बल जे विष्णु तना जस गावे विष्णु मिले सभी सज पावे वाह वाह वाह ही जानिए वाह जाने यो होए यो आर हो जब मिले तब मिलतना जाने कोए ससा सो निका कर सुधो कड़ परचा की बात नरोधो कड़ परचे जो उपजे पाओ ऊ रहया ते तेर पंग राओ खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बौर न होई खोज भू जो करे बिचारा तो पवज तरतन लावे बारा ससा सो सह से सुवारे सोई सही संदेह निवारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा ता बेहतरी ओ कंत कहावा
हा होत होए नहीं जानना, जाबी होए तबे मन मानना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही हो यो न होई, ल्यो ल्यो करत फेरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यो जो लिवलावे, सोग मिटे सभी सुख पावे, खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू नहीं चेते, अब जग जान जो मन रहे, जय का बिछरा तैसर लय, बावन अखर जोरे आन, सकेन अखर एक पशान, सदका सदु कबीरा कहे, पंडित हुए सो अन पै रहे, पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत् विचार, जाके जी जैसी बुद्ध होई, कहे कबीर जानेगा सोई, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग गौड़ी थित्ती कबीर जी की, श्लोक पंद्रह थित्ती सात वार, कहे कबीर उर्वार न पार, साधक सिद्ध लखे जो पेओ, आपे करता आपे देओ, थित्ती अम्मा समय आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत् निसार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पाए मन निर्मल, हर कीर्तन में अन दिन जागा, रहाओ परवा प्रीतम करो विचार, कड में खिले अकाटे पार, काल कल्पना कदे न खाए, आज पुरख में रहे सुमाए, द्वितीया दो कर जाने अंग, माया ब्रह्म रमे सब संग, ना बड़े ना कड़ता जाए, अकोल निरंजन एक पाए, तृतीया तीन ने सम कर ले आवे, आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजे विश्वास।

करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

ना तरखर हृसे गैराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुट टी नागे अंश कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यो लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नाश जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम सुन ला गोरंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारी ले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारी ले चरण बदक जन तेउ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे नाम सारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई चरण ना छाडो शरीर कल जाई कौर वदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन कर ना बिलंबा बेगमपुरा सैर को नाओ दुख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खोब ना खता न तरस जवाल आ मैं खूबतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रघाओ कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही आबादान सदा मशहूर ऊहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल न को अटकावे कह रविदास खरा चुमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बैरागन रविदास जियो काट आव काट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार रमैये सो एक बेन

मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए, रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए, कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा साध हृदय बसे, कौन घेरे अवमान, बार उदक पखारिये, कर पीतर बेबद बेकार, शुद्ध कमन पर होए बो, सुज कुंचर वेद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जसा गत, जांत सब संसार, पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर पेटिए, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मान मन गी मिले, छुटकत बज्र कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुर निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, तारी न टरे परम फास, प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, निरभौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, राग आस महला पहला, कर पहला सोदर, सोदर तेरा केह, सो कर केह, जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेके संख, केते तेरे वामन हारे, केते तेरे राग परिसो कही है, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनु पौन पानी बै संतर, गावे राजा तर्म दुवारे, गावन तुदनु चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे, गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारे, गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे, देवतिया दर नाले, गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनु साध विचारे, गावन तुदनु जति सती संतोखी, गावन तुदनु वीर करारे, गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर, जुग जुग बेदा नाले, गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन, सुरगुमश पय आले, गावन तुदनु रत्न पाए तेरे जेते, आठ सठ तीर्थ नाले, गावन तुदनु जोध महाबल सूरा, गावन तुदनु खाणी चारे, गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह मंडा।

भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक तेरी अनक करे घर पूजा जी तब तापे जपे बेंत तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंत से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरखे परंपर करता जी तुझेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृज सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग ऐसा मोहल्ला पहला चौप दे कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होई कीमत पाए ना कह आ जाए।

नदर करे जो कुछ करना सो करया अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कहिए सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तब ताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सस संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहद्या उठद्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदले दहसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ जी उपाए जुत खत कीनी काली नथ क्या वड्डा पाया किस तू पुरख चोरू कौन कहिए सर्व निरंतर रव रहया नाल कुटुंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिट गया आगे अंत न पायो ताका कंस शेद क्या वड्डा पया रत्न उपाय तरे खीर मथया होर पगलाए जे असी किया कहे नानक छपे क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्तारी आराम ना फल हुआ तिस रूप नारेख अनाह दवाजे शब्द निरंजन किया करे विखियान जाने जे कोई अमृत पीवे सोई रहाओ जिन पिया से मस्त पय है टूटे बंधन फाहे ज्योति जो सुमानी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्वजोत रूप तेरा देखया सगल पवन तेरी माया हरारे रूप निरालम बैठा नजर करे विच छाया बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो तो रता नानक कहे विचारा आसा महला पहला मैं गुण गल्ला के सिर पार।

का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाक गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार। निगुरे कहो गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे, आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए। सदगुर सेवे तिल ना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए। सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे, पूरे गुर के शब्द समागे। हरहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम खाने। साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए ना जागे। मन निर्मल साचे शब्द समागे, सेवड भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ। आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहन न जाए। आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई, किरी मुछुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए। अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोए। रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए। ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द वखाणे कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर। बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए। गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गद पाए। आसा महला तीजा मेरा प्रसाचा गहर गंभीर, सेवत ही सुसांत शरीर शब्द तरे जन सह सुपाए। तिन के हम सद लागे पाए जो मन राते हर रंग लाए, तिन का जन्म मरण दुख लाता ते हर दरगे मिले सुपाए। रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए। हर पर सदा रहा भरपूर आपे नेड़े आपे दूर, आखने आखे बके सब कोए आपे भविष मिलाए सोए। कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचू आप गवाए। हर रंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारण हार। आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया। सदगुर सेवे सोजी होए दूजे पाए न लागे कोए, मूल लागे से जन प्रमाण अन दिन राम नाम जब हिरदे। कुर शब्दी घर एको जान, रखाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए। मनमुख अंधा ठौर न पाए दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए। गुर की सेवा सदा सुपाए संत संगत मेल हर गुण गाए। नामे नाम करे विचार आप तरे कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम जाए नानक महल शब्द कर पाए। गुरमत सत सर हर जल नाया
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ, ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਬ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸੁਭਾਈ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾ ਵਾਸ, ਇਤ ਕਰ ਮਨਮੁ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ, ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਸੋ ਹਰਖ ਦੁਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਬਦ ਉਧਰੈ, ਰਹਾਉ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਤੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਕੋ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ, ਕਰਣੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਸਾਈ, ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਟਿਲ ਨ ਪਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਫੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਪਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਵੱਖਰ ਪੱਲੇ ਨ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਫੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਜਾਤੀ ਊਤਮ ਸੋਏ, ਗੁੜ ਪੌੜੀ ਸਬਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਡਾਈ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਠੋ ਝੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੀ ਪਰਮ ਫੁਲਾਵੇ, ਮਮਤਾ ਵੱਧ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖ ਸੀਗਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤ ਤਨ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਝੂਠ ਮੋਹ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਦਿਨ ਹਰਾਵੇ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਪਾਵੇ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਚੀ ਜੇ ਸਾਜ ਪਿਆਰ।

साथ रूप न जाए, तेघा होवे जेहे कर्म कुमाए, सबदे ऊंचो ऊंचा होए, नानक साज सुमावे सोए, आसा महला तीजा, भगत रत्ता जन सह सुपाए, गुर के पैसा चे साज सुमाए, बिन गुर पूरे भगत न होए, मन खरुन ने अपनी पद खोए, मेरे मन हर जब सदा त्याए, सदा आनंद होवे दिन राती, जो इच्छे सोई फल पाए, हरहाओ गुरपूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम साए, अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे सा सुमाए, हर प्रवेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ ते वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर न कोए, गुर सागर पूरा भंडार, उत्तम रतन जवारे पार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार, आसा महला तीजा, गुर सायर सतगुर ससोए, पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान बिनासे, आनंदन जागे वेखे ससोए, रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुरते सोजी पाए, अंतर मैल गुर शब्द पछाणे, आमन जान रहे फिर नाम सुमाने, जमन मरना गे संसार, मानमुख अचेत माया मोह गुबार, पर निंदा बो कूड़ कमावे, रिश्ता का कीड़ा रिश्ता मय सुमावे, सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पग दृढ़ाए, पाणा मन्ने सदा सुख होए, नानक सच सुमावे सोए, आसा महला तीजा पंच पदे, शब्द मेरे ते सदा आनंद, सतगुर भेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे ना आवे जाए, पूरे गुरते सा सुमाए, जिन को नाम लिखिया तुरलेख, ते अनदिन नाम सदा ते आवे, गुर पूरे ते भगत सेख रखाओ, जिन को हर प्रभ लय मिलाए, इनकी गैन गद कही न जाए, पूरे सतगुर दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम सुमाई, जोश करे सो आपे आप, एक कड़ी में था प्यो थाप, कह कह कहना आग सुनाए, जे सो काले थाए न पाए, जिनके पोते पुन्न इन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसे तहां जुग जाए, ज्ञान रतन सचे सह सुमाए, नावे जेवड होर तन नाही कोए, जिसनु बख्शे सचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, नृत करे बोवा जे वजाए, यो मन अंधा बोला है, किस आग सुनाए, अंतर लोक परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए, गुरमुख भगत कट चानन होए, आप शान मिले प्रसोए रहाओ, गुरमुख नृत कर लागे पाओ, पूरे ताल विचू आप गुवाए, मेरा प्रसाचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सस होए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा पवजन जीव तुमर, गुर प्रसादी पवजल तर, गुर के बचन भगत पाए, हर जु आव से मने आए, हर कृपा करे सदगुरु मिलाए, निचल भगत हर सिंह चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर के पाने सदगुर मिले सच सोजी होई, गुर प्रसादी मनस हर बूझे सोई, मैं सो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मनस ता सदा सुख होई, रहाओ ये जुग में निरप हर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नावे जम के वस है, मनमुख अंध गवार, हर के पाने जन सेवा करे, बूझे ससोई, हर के पाने सलाही है, पाणा मने सुख होई, हर के पाने जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई, नानक नाम सलाए तू, गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
तू करता सत्यार मैं डसाई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सब नहीं त्याया, जिसनु कृपा करे तिन ना मरतन पाया। गुरमुख लादा मानव गवाया, तुद आ विछोड़िया

ऐ राग ब्रगत पयो हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोय हर बिन रह न जाई। राग शरण जगदीश्वर प्यारे मोय श्रद्धा पूर हर गुसाई, जन नानक कह मन अंध होत है हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा हर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिन पौ बोध दिखाया। भाई मीत कुटंब देख विवादे हम आई बस गद गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोत होए साधक सिद्ध सुरदेव मनुख, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रखाओ। एक फिरे उदासी तिन काम में आपे, एक संचे गिर गी तिन होए न आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुर पावे। तब करते तपसी फूलाए पंडित मोहे लोभ सुभाए, त्रैगुण मोहे मोया आकाश हम सतगुर राखे देकर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कहे सो कार कुमावा जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा ससु ते वर कीनी वाख, दे जिठानी मोई दुख संताप करके जठेरे की चूकी कान, ते रख्या कीनी सुड़ सुजान। सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे सतगुर मोको हर नाम दिवाया। रहाओ प्रथमे त्यागी हो मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत सुमाने, तुरिया गुरमेल साध बिशाने। सहज कुबा में आसन बाध्या ज्योत स्वरूप अनाह दवाज्या, महा आनंद गुर शब्द विचार प्रेस वराती तन सुहागण नार। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कुमावे तो उतरे पार। जन्म न मरे न आवे न जाए, हर सेती ओ रहे सुमाए। आसा महला पंजवा ने भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार जित करे वसे सोग्र सोभावंत। गुरमुख पाई किने विरले जनता, सो करणी कामन गुरमिल हम पाई, जय काय प्रथाए सुहाई। रहाओ जिचिर वसी पिता के साथ, किचिर कंत वो फिरे उदास। कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरयाणी कर मैं ता सर्व सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुड स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी। सगल संतोखी देर जेठानी, सब परवारे माघे श्रेष्ठ। मती देवी देवर ज्येष्ठ, तन सो गृह जिस प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विखाए। आसा महला पंजवा मता करो सो पकन ना देई, सील संजम के निकट खलोई। पेश करे बहु रूप दिखावे, गृह बसन ना देई वख वख परमावे। घर की नायक हर वास न देवे, जतन करो उरझाए परेवे। रहाओ तुरकी भेजी आई अमर, नौ खण जीते सब थान सनंतर। तड़ तीर्थ न छोड़े योग सन्यास, पढ़ थके सिमरत वेद अभ्यास। जय बैसो तय नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश। होची शरण पया रहन न पाई, कहो मीता हौ कह पै जाई। सुन उपदेश सदगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोय मंत्र दरड़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्रमिलो नानक पै अचिंत।

परदेश त्याग सौदे को आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन ओ मल बटानी, सह व्यापारी द्वारे आए, वखर काढ़ो सौदा कराए, रहाओ सहे पठाया सहे पास, अमोल रतन अमोला रास, रिट सु

माया मूठा चेत नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखय उतरी केरे, आवर उपदेश आप ना बूझे, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजे।

रब रहया प्रभ सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एक को एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याय तै प्रभु को नम।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सा मीता झूठा इओ पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे, खा खा मोए गवारा।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक ऐ ला जन्म गवाया, पहुँच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिए रुढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम न सुनई डोरा, रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतर जामी सब के जाने, उसते कहां छुपाया, कूड़ कपट बांच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद राख, मन में एक अंकारे, तेरा जान नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बुद्ध अपना, पाछे अवर दी जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिरसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरद सम्हारिया, होए किरपाल माध पित न्याई, बारग ज्यों प्रद पारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ लिए महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजे न जाए ये पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंत काल प्र पय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हों तुद बिन के सालाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिग देख्या संसार, रख्या करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार, रहाओ। जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाइए, विण नावे सज बौराया, नाम मिले सुख पाइये, क्या कहिए इस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कुछ कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस, जे दे वडियाई ता तेरी वडियाई, एत ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ, आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जने पियो, जन्म जन्म टूके पै पारे, दुर्त बिनासियो परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर, मंतन मेरा ठार थियो,
रहाओ, तुमरी कृपा ते पयो साध संग, यो काय तुम आप कियो, दृढ़ कर चरण गए प्रा तुमरे, है जे विखिया पई कियो, सुखन दान नाम प्रा तुमरा, यो अविनाशी मंत्र लियो, कर कृपा में सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो, तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेल लियो, तन सो कलयुग सा संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार हीओ, आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किशुआ, अवर के जाने ज्ञाना, पूर चूक अपना बार्ग बक्सया, पार ब्रह्म भगवाना, सदगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया, हर अमृत मुख नाम दिया, हरहाओ, अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोर ते बहा पकर गुर काढ़ लिए, निरपो पए सगल पो मिटिया, राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे, कार्ज सगल सवारे, गुण निदान साहेब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला, आसा महला पनवा, तू विसरेता सब को लागू, ईत आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूज, साचे अलख अपेवा।

जो प्राणी काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, ता प्रभु नानक मीठे लागे। आसा महला पंजवा, एको एकी न निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे अरहाओ। सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलो खिन में करता, आप लेपा निर्गुण रहता, करन करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा, कोड़ जन्म के रे पवारे,

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु मां देव मोया। गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर था के पुनः चरना। तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा। गुरु नानक बां पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा। सर्व दुख जब विसरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी। संतृप्ता से हर घर त्याय, हर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जानत दूर। सो जन मरता नित नित चूर, जिन कछ दिया ते चित तनाहे। मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक। गद पाई गे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा। नाम जपत मन तन सब हरिया, कालमा दोख सगल पर हरिया। सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर। गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वस गद आया। जिस मन वस्या

सर्व सुख पावै, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाव, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह सुमाही, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओड़ गही निरपो पद पाई है सा।

अनटेक है, सो जानो काचा हराओ। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत न पाए। जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए। चितराई सियाणपा किते काम न आई है। तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है। जे लह कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा। जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा। आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया। हर जेब न कोई गुर तुठे ते पाई है। सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध सर कुरबाना। नाम ना विसरो एकन चसा यो कीजे दाना। रहाओ भागट सच्चा सोए है जिहर तन अंतर। सो छूटे महा जालते जिल गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार। हो आज युगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर। नाम त्यावो सत सदा हर घर मन रंगे। जियो प्राण तन गुरु है नानक के संगे। आसा महला पंजवा साई अलख पार। भोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए। मैंडा हवन से हो वन्या कुर्बान। साई अपने होवे अंधकणा। मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी। सुखी हूँ सो पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए टेख मुस्ताक पही। मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा। नानक का पात साहो दिसे जहारा। आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो। कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो। तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभ। तू सबना के नाथ तेरी सिट सब। रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर। ना बिहूनड़िया से मरन विसूर विसूर। दास दासन पाए मिटिया तिना गौन। विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पस हरियाओ तैसा संसार सब। नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ। आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर। झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार। आड़ पैर साल आहे सिरजनहार। तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह। रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला। सोई लगे सच जे तू दे अला। जो न टहंदो मूल सो कर रास कर। इको चित वसाए कदे ना जाए मर। तिना प्यारा राम जो प्रा पाणिया। गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया। आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा। खेद न जानो मूल साई जेया। मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया। सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया। रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे। जिन मन मुठा आप पूरे भगत से। जिसनु मने आप सोई मानिए। प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए। दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा। नानक की लोचा पूर सचे पात सह। आसा महला पंजवा पूर है या सर्वठाए। हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत।

वंजन वहन बोतड़ा हा चरण मन चढ़ लंगीए आड़ पैर गुण गाय साधु संगीए रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की सरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई ना किसी संग काहे गर्बीए एक नाम आधार पौजल तरबीए।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्म ना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा

आवे, सेवक कौ निकटी हुए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल हुए आवे, रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी जो अपने प्रभावे, तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसने आवे। आसा कर ग्यारवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद नटुआ पे दिखावे, बहु विद जैसा है ओ तै सारे, अनक जोन प्रम्यो प्रपीतर सुखे नहीं परवे सारे, साजन संत हमारे मीता बिन हर हर अनीता रे, साह संग मिल हर गुंगा।

गुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने।

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते काट काट काट काट तू ही मोहेना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ होए सकारत हृदय चरण बसाहे ये मुक्ता ये जूता रखो संत संगाहे।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नाम साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सज साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रवलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथे सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार परत सदगुरु बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना ए तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मेले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए होमे ग्रास एक दिथाय किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रव आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तन का को कहिए बिन गुर राम नाम कत लईए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मन हारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रगाया अवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन।

नीत नीत कर बंधिए जे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिते सुत्ता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चलिया केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वंज करो मसूद लहो

तणि साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे हृदय सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। योगी पोगी कापड़ी

ब्रह्म लुकाना, एक तपसी बन में तप करे, नित तीर्थ वासा, आप न जीने तामसी काहे पए उदासा, एक बिंद जदन कर राख दे, से जति कहावे, बिन गुर शब्द ना छूटगी, प्रमे आवे जावे, एक गिरगी सेवक साधका गुरमति लागे, नाम दान इस नाल गिरड़ हर भगत सो जागे, गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाणे, नानक नाम न विसरे सचे मन माने, आसा महला पहला, मनसा मने समायले।

दिनरात नाम अमोलह, तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, नानक नदर त्रे हो मिले सच वांडिया। आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिर नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत न पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाए, आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोणी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मिटे जप नाम मुरारे, नानक नाम न ना विसरे पूरा गुर तारे। आसा महला तीजा अष्टपदिया कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

आस तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना है दे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उरतारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साज कहे विचार हर का नाम रखे उरतार हर भगती राते मुख द्वार आसा मोहल्ला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मे बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागावे सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावे भुख न जाई नामे तिसना अगन बुझ नाम मिले तसे रजाई अरहाओ कल कीर्त शब्द पछान एहा भगत चूके अवमान सतगुर सेवे होवे परवान जिन आसा कीती तिसनो जान किस क्या दीजे जे शब्द सुनाए कर कृपा नामा नमसाए त्यो सर दीजे आप गवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तय आप कराए आपे गुरमुख नाम साए आप भुलावे आप मार्ग पाए सच्चे शब्द सच सुमाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मानमुख मोहे परम पोलाणी बिन नावे सब फिरे बौराणी तीन पवन में एक कामाया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया वो कर्म कमावे दुख सबाया सतगुर सेव सदा सो पाया अमृत मीठा शब्द विचार अनदन भोगे हो में मार तेज आनंद कृपा तार नाम रते सदा सच प्यार हार जा

पाए, माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बंदया, अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जन छोड़ी, गली गोबिंद गर्व पया, ताड़ पांडे जिन आवी साजी, चाड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे ताले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने, इन बद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाई ने आपे, तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाचे, लग चौरासी पीह पवया, एको लेवे एको देवे, अवर ना दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे गुम चिलाए, ज्यो जिया घर जक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख, दूजा कोई नाही, एको रवर या सब थाई, एक वसया मन माही, तट टंच करो क्या प्राणी, तड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना, पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी, जो किश हुआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव, सर्ब निरंतर रब रहया, टड्डे टाए उसारे आपे, यूं तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे उगम चलाए, तिस निस्तारे, जा को नदर करे, हणाणे रबत रहे काटे अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आ मिलाए करता, पुनरप जन्म ना हो।

दिया सब नी लिया, तरमी करमी हूं पया, नन्ने ना पोनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहा गण पैने, तंतन कबहू मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रब रहया, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

तन प्रे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरक सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाणे ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तेल रह ना सक कह सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोका।

आराम। जग जीवन दाता हर मन राता, सहज मिले मेलाया, सा सवा संता की संगत, नदर प्रभु सुख पाया, हर की पगतर ते बैरागी, चूके मोह प्यासा, नानक होमे मार पतीने, विरले दास उदासा, अराग आसा, महला पहला, शांत कर दूजा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो, सबना का दाता कर्म विधाता, दुख बसारण हार जियो, दुख बसारण हार स्वामी, कीता जाका होवे, कोड़ कुटंतर पापा केरे, एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा, बग से बग्गा, कड़कड़ करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो, जिन एक मान त्याया, तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो, तिन जम नेड़ न आवे, गुर शब्द कमावे, कहो न आवे हार जियो, ते कहो न हारे, हर हर गुण सारे, तिन जम नेड़ न आवे, जमन मरण तिना का चूका, जो हर लागे पावे, गुरमत हर रस, हर फल पाया, हर हर नाम उर तार जियो, जिन एक मन त्याया, तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो, जिन जगत्यो पाया, तंदे लाया, किसे बिटो कुर्बान जियो, ताकि सेव करीजे, लहा लीजे, हर दरगे पाईगे मान जियो, हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे, ओ नवनिध पावे, गुरमत घर त्यावे, नित हर गुण आख वखाणे, ऐनस

जियो नाम लैन से सोह है तिन सुख फल होवे मन से जिन जाहे जियो तिन फल तोट न आवे जांत पावे जे जुग केते जाहे जियो जे जुग केते जाहे स्वामी तिन फल तोट न आवे तिन जरा न मरना नरक न परना जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही नानक पीड़ ना खाए जियो नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे मन है से जिन जाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शांत कर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़गेरा ताराम बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम फिर होए ताता खरा माता ना बिन परतापे ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमके हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया सदकहे नानक चेतरे मन मरे हर ना कालिया पावरा फूल पहंतिया दुख अदपारी राम मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम विचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो जव मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया मेरे जीड़या परदेसिया इत पवे जंजा ले राम साचा साए मन मसे की फासे जम जा ले राम मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया परत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया सदकहे नानक चेतरे मन जीड़या परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के परम

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सवाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तेरे रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

तेरा गंड लाग गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर बसया आए नाम या जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे। जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले धारत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्ब लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे। अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। त्यों कहे नानक मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जावे। मन तू मत मान करे के हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलख हो। हो निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे। जांच पाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारे। से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए इनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। यों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम फुलाए।

जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे। जिना नानक गुरम खिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बारों पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने, हर संतां नूं होर थाओ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान पालिया लय तूर मुख लावा, गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा। जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा, गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। हर सेवे पूरा सतगुरु पुख जाए लह मेरी, गुर सिखा की पुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजया तिर तोट न आवे हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइयां जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर घर होया हर घर मन उठा, आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। तिस की तिसना पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे। जन नानक कौ हर कृपा कर निद जपे हर नाम तरावे। जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे। जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई। जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे। तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा। जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सा।

गुर मिलाए गोविंद जपत अगहाइन बिनवंत नानक सिमर सुवा निध सिद्ध चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसे।

ताप चितव चितनाथ, चितव चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया हर कंठ लागे दिस भागे, मिलनहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

लिख नावे तर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जीव विस्माद भेद, विस्माद रूप।

पौड़ी, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले है सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है, जिन सच्चे स्यो चित लाया। जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हौ मिच आया हौ मिच गया, हौ मिच जमया हौ मिच मोआ, हौ मिच दिता हौ मिच लया, हौ मिच खटिया हौ मिच गया, हौ मिच सचियार कूड़ियार, हौ मिच पाप पुन विचार, हौ मिच नरक सुरग अवतार, हौ मिच हसे हौ मिच रोवे, हौ मिच परिये हौ मिच तोवे, हौ मिच जाति जिनसी खोवे, हौ मिच मूर्ख हौ मिच सियाणा, मोह मुक्त की सार न जाना, हौ मिच माया हौ मिच छाया, हौ मे कर कर जनते उपाया, हौ मे बूझे तांदर सूझे, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे, नानक हुकमी लिखिए लेख, जेहा वेखे तेहा वेख, महला दूजा होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाहे, होमे एई बंदना फिर फिर जो नी पाहे, होमे किथों उपजे कित संजम ए जाए, होमे एहो हुक्म है पये किरत फिराहे, होमे दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कुमाहे, नानक कहे सुनो जनो एत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखई, जिनी सचो सच तिहाया, ओ नी मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत तर्म कमाया। ओ नी दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बगसी सी अगला, निज देवे चढ़े सुवाया, वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला।

संग्राम रण में छुट्टे प्राण ला सुरती ला ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तस मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लगी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत

पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पद परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

रथवा हो, कालजुग राथ अगन का ऊर अगे रथवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे, सब को सच समावे रेग कह रहया परपूर। राम नाम देवा मैं सूर, नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोखंतर पाहे, जुज मैं जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया, पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रावन मैं रंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ।

करना कियो कर आपे ही तै तारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है आपन हथी अपना आपे ही काशवारी है। श्लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडी है सदगी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस क्यो न आखिए जे लेखे वरते सोए महला दूजा सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुत्था जाए नानक दोवें कूड़ियां थाए न काई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाई है सो साहिब सदा समा

जियो गुर चरण लाघम बिनवता पूछत कह जियो पाया कामन काज जग उपजे बिनसे कहो मोहे समझा।

ज्योतक जाने बहुव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंघासन बहुत सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर यो रामे जंपो मेट जन्म मरना आसा पील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावे।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, तिन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, ऐसा गर कहताई, इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगस।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेरी सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टरक परे है, मुखो ननिक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर।

कर भय सचिरामन जाई बार बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बुझे राम रमत तिस सबके सूझे बाईस चौपद तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ दो तुके सत।

अस बड पाग हमारा तुर नर मुन जन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की।

हीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई।

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च

अंत अनंते अंतर नाही आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे संग तुम्हारे बसा नीच रूह ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा सत्संगत मिल रही है माधव

देखे देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है रहाओ जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोमन लगत है मान बज क्रम रस कसे लुभाना बिनस गया जाए कहूं समाना कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई आसा बाणी भगत तन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जनम बेलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी जलत जाल जम फंद परे बिग पल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त पये जोत समाए समानी जाके असली प्रभ पहचानिया तन्ने तन पाया तरणी तार मिल जन संत सुमानिया महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारी ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बिबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई अरहाओ जननी केरे उदर उदकम पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्न में रख ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल माहे तांतिस बाहर पंख कीर्तिन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचिया जिन मन होर मुख होर ते

मिरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सबको दान दे प्रभ ओ है मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत भीके नाम सुनत आवे मन रोह है। कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

लाले गोले गुरसिखा के जिन्ना अनदिन हरपरा पुरख ते आया मेरे मन तन बिरो गुरसिख पगलाया मेरे प्राण सका गुर के सिख पाई मोको करो उपदेश अगर मिले मिलाया हरहाओ क्या हरपरा पावे ता गुरमुख मिले जिन वचन गुरु सदगुर मन पाया वड़भागी गुर के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सत्संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सदगुर संगत संग न पाया से पाहीन पापी जमखाया आप कृपाल कृपा प्रतारे हर आपे गुरमुख मिले मलाया।

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यो चित लावे। अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाही मुए मर जावे। आंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध

सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सब बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवां।

अंतर मायल न उतरे होमे बिन गुर बाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। पोड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी हरहाओ सात बेद सिमर सब सुध सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को उपावे मन वेखो कर बिचारी हर सरमजन कर इस नाना परम आए तर सारी। अनक सोज करे दिन राती बिन सतगुर अंधारी धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंज।

अपन हाथ मतात, सियानप काहू कामना आत, जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ। देश कमामन तन जोरन की, मनसा बीचे निकसे सास, लश्कर नेब खवा सब त्यागे, जंप ऊठ सिदास। होए अनन महर की दृढ़ता, आपस को जानात, जो अनिंद

मित्र सत्र सब एक समाने, जो जुत निशानी पूर्ण पूरयो सर्वथाई, आन न कतू जाता काट काट अंतर सर्व निरंतर, रंग रवेओ रंग राता, पय कृपाल दयाल गोपाल, ता निरपय कह कर आया, कल कलेश मिटेखन पीतर, नानक सय समाया, गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पय करो बेनती, सो अपने दुख परया, पार ब्रह्म जिन दे आराध्या, तिन पोसागर तरया, गोर हर बिन कोरा बिरता दो काटे, प्राप्त अवर सेवक जे हुई है, तित मान महत जस काटे, अरहाओ माया के संबंध सैन साक, किथी काम न आया, हर का दास नीच कुल ऊंचा, ते संग मन बांझ बल पाया, लाख कोट बिखिया के बिंजन, ता मैं तृष्ण ना बूझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी, फेरत फेरत तुमरे द्वार आया, पै पंजन घर आया, साध के चरण तूर जन बाचे, तुग नानक इहो पाया, गुजरी महला पंजवा, पंच पदा कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, प्रथमे गर्भ माता कै वस, ऊहां छोड़ तरन में आया, चित साल सुंदर बाग मंदर, संग न कछु जाया,

त्यान आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल अरहाव मिल वरनारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे ती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कबहू जाई हराओ करत करत अनकबो पाती

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अशेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बग्स।

भगत गोपाल सिमरन मिटद जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुरहृद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत सर्व विद

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सत्संग दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्र स्वामी ओत पोत प्रव साथ। शरण प्रयो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदिया महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच देवनहार। अये जी जब तब संजम सच आधार, हर घर नाम दे सुख पाई है तेरी।

भाग परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसे।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रति

अंत गया पछताई, अपनी कृपा कै गुर पाई है विचों आप गवाई, तृष्णा भुख विचों उतर है, सुख वसे मन आई।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचों आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखै, करे अंदर सच पाए।

तब तप आपे सतगुर आप गए चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउज पाएंदा प्यारा आपे ही जप जप आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलांदा प्यारा जन नानक हर स्थापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे सौ आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया हर घर नाम निदान है।

संत संगजा का मन शीतल, ओ जाने सगली ठंडी। होमे रोग जा का मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया, ताको सर परगासा। अज्ञान अंधेरे सू सनाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांग है। जय कीर्तन तेरा साधु गावे, तय मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा, तन संतन का तन संतन का, मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। संतन बेन अवर न दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की, तो पार ग्रामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई है। ईगा सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केत की उपमा कही है। अगम्य गोत्र सद अबनासी, शरण संतन की लई है। निर्गुण नीज अनाद अपराधी, ओर संतन की आही। बूढ़ तमोग्रे अंध कूप मह, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा कर पहला, जाके हृदय वसिया तू करते। ताकि तय आस पुजाई, दास अपने को तू विसरे नाही। चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कसन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रखाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जा को तुझे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यू अज्ञाना, प्रगट पय सवठाई। सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पुरख सुपाई। कहो नानक जिस पय दयाला, ताको मन ते बिसर न जाई। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोए व्यापी। कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होइगे काहू जतना। ओड़क को ना पहुंचे मेरे मान, साध शरण छुटकारा। बिन गुर पूरे जन्म मरना रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। वो जो परम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा। पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोग ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात, यो खसम का किया। जाको कृपा करी प्रा मेर है, मिल सा संत नौ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर, सबना करत उधारा। कहो नानक गुर बिन नहीं तरिए, त्यो पूर्ण तत् विचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो। राम नाम ता सारा, किलभ काटे निमख आराध्या। गुरमुख पार्यो तारा, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी। सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रखाओ। मुगत भुगत जुगत सज पाई गे, सर्व सुखां का दाता। अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता। त्रमणी सुनिए रसना गाइये, हृदय त्याइये सोई। करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा न कोई। वडे भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला। सा संग नान गुण गावे, सिमरे सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर स्नान सिमर प्रव्यापना। मन तन पय अरोगा, कोड विघ्न लाथे प्रसरणा। प्रगटे पले संयोगा, प्रबाणी शब्द सुपाखिया। गावो सुनो प्रो निदपाई, गुरपूरे तू राखिया रहाओ। साचा साहेब अमित वडाई, भगत वशल दयाला। संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बण आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की।

आदि। एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन दियो दिखाई, सुन मीता तूरी कौ बल जाई, यो मन तेरा पाई रहाओ, पा मलोवा मल मल तोवा, यो मन तय को दिशा, सुन मीता हूं तेरी शरणाई आया, प्रा मिलो।

भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा थारी साब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा कोल ब्रह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रदपाले निसार समाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे।

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ते नर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिस्रे मेरा राम स्नेही इस लाख बेदन जन आई रखाओ जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुगे प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक घोर में परया जित को लाया तिद घी लागा तय सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभमानी लोभन मैं लोभी लोभायो क्यों हार नरचे ज्ञानी हर जन को ई सुहावे ते निट कर सेवा सदगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमल सो अमली लबटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कहलीना प्रसंत से हितकारी विद्या में विद्यं सीरत्या नयन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यो हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रा मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रखाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हिरदे ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कौ नानक ताके पूर करमा जाका गुरचरनी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है सिमरहो हर हर नाम परानी बिर से काची दे अग्ञानी हरहाओ मृत न अर स्वप्न मनोरथ ता की कछ ना वडाई आराम पजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत नह तृपतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार दिखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रापाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनासी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे।

माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नांग प्रभ अपना हंद से ती कर आया सोरठ महला पंजवा प्रभ की सारण सगल पैला थे दो बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापत, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछ है, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधार है, दर्शन पीड़ित होत निहाला, हर का नाम विचार है, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, ताटे जमकी फंदा रखाओ। समरथ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर

अपना प्रभु त्याए संत सरोवर रनावे खोजन परम गद पावे मरे न आवे जाई हर हर नाम त्याई तो ब्रह्मचार सो जान जे दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रसरणाई साब चिंता गणत मिटाई सोरठ महला पंजवां पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवां गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा प्रा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवां गुरपूरे कीती पूरी रव रव रया पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद नित गाईये सा संग मिल त्याईये मन बांछित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवां दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन तिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रोम आयो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो।

रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इशनाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आदि पुरख प्रापाया सोरठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया।

की ओटा जो सिमरत हकीकत होवे उधर है सगले कोटा रगाओ संत संग जस गाया यो पूर्ण गर्तन पाया को नानक।

तेरी ओट गुसाई तू समर्थ शरण का दाता आठ पैर तुम त्याई रहा। जो जन भजन करे प्रतेरा इसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पो मिटिया हर गुण गाए मन माही। दुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सोभा सेती पूर्ण हुई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी पूर्ण प्रभु के कामा गुर चरणी लाग तरयो पौ सागर जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा हयो किरपाल दीन दुख पंजन आपे सब जथाटी फिन मैं राख लियो जन अपना गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सत्याई है सगल कलेस मिटे स्थान ते मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जी जंत जाके सब कीने प्रभु ऊंचा अगम्य पारा सा संग नानक नाम ते आया मुख उजल पै दरबारा। सोरठ महला पंजवा तिमरो अपना साई दिन सरैं सत्याई।

सुख पुंचो मेरे पाई। सोरठ महला पनवा सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे थारे। राख पैज नाम अपने की करन करा मनहारे। प्रभ जीओ खुशमाना कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार सुमरा सुवा।

जागृत तो बैरागी सबनम विद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंगराता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेतर सोतर।

मेल पंथ दसाई चोहर दसे मित ते सहो बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोझी पाई सरोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच होमे नाम सार पंडित भूले दूजे लागे माया कै व्यापार अंतर तसना भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार सतगुर सेवे सुख पाया सच्चे शब्द विचार अंदरों तसना भुख गई सच्चे नाए प्यार नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर राख्या उरतार महला तीजा मन मुखार नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए अंतर अज्ञान अंधेर है सुध न काई पाए मन हर सहज न बीजियो भुखा के अगे खाए नाम दान मसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर सन हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तन मुखर बोले साहर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिवतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी सलोक महला तीजा हस्ती सिर जो अंकस है अहरण जो सिर दे मन तन आगे राख कै ऊबी सेव करे क्यों गुरमुख आप निवारिय सब राश टका ले नानक गुरमुख बुझिए जां आपे नदर करे महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उधारे अपना दरगे पावे मान पौड़ी गुरमुख सखिया सिख गुरु मेलाईया एक सेव गुर पास एक गुरकारे लाईया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना पाओ गुरु देवाईया गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता भाईया गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाईया सलोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे जम दर बदे मारी है फिर विष्टा मह पचाहे महला तीजा नानक सतगुर सेवे अपना सेजन सच्चे प्रवान हर के नाए समाए रहे चूका आवन जान पौड़ी धन संपे माया संचिए अंते दुखदाई हर मंदर महल सुवारिये के साथ ना जाई हरंगी तुरे नित पालिये किते काम न आई जन लाभो चित हर नाम स्यो अंत होए सकाई जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई सलोक महला तीजा बिन कर्मे नव ना पाईये पूरे कर्म पाया जाए नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए महला पहला एक दज एक दबीए एक ना कुत्ते खाहे एक पानी विच ओ सटी है एक पी फिर हसन पाहे नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे पौड़ी तिनका खादा पैदा माया सा पवित है जो नाम हर राते तिनके कार मंदर मैल सराई सा पवित है जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते तिनके तुरे जीन खुरगीर सा पवित है जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते तिनके कर्म धर्म कार सा पवित है जो बोले हर हर राम नाम हर साते जिनके पोते पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाते सलोक महला तीजा नानक नाव कुत्या फलत पलत सब जाए जब तब संजम सब हिर लया मुठी दूजे पाए जम दर बदे मारिये बहुती मिले सजाए महला तीजा संता नाल वैर कमाम दे दुष्टा नाल मोह प्यार अगे पिछे सुख नहीं मर जमे वारू वार तृष्णा कदे ना बुझई दुबदा होए खुआर मोका ले तिना निंदका ते सच्चे दरबार नानक नाम विहूणिया ना उरवार ना पार पौड़ी जो हर नाम ते आए दे से हर हर नाम रते मन माही जिन्ना मन च एक आराध्या तिना इस बिन दूजा को नाही सेई पुरखर सेम दे जिन तुर मस्तक लेख लिखाही हर के गुणत गाम दे हर गुण गाए गुणी समझाही वड्याई वड्डी गुरमुखां गुर पूरे हर नाम समाही सलोक महला तीजा
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੇ ਸਵਤਾਏ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਪਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਵਿਆਏ, ਨਾਨਕ ਗਣਤੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਬਗਸੇ ਸੋ ਪਵੇ ਥਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਿਲ ਕੁਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल साजन संगत, मुख बोली हर हर फली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, तब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसर से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो तुत्या गई विखाए, तगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं हो मैं दूजे पाए। नानक गुर शरणाई उबरे सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सब दरते हो मैं गई तो बावंती नार, तिरके पाने सदा चले ता बनया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गोप्या अपना ते नर बुरियारी, हर जियो तिन का दर्शन ना करो

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई।

आवे हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखे पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

सास मास तब जियो तुम्हारा, तुम्हें करा प्यारा। नानक शायर एव कहत है सच्चे पर्वत गारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वह सोख छिपाइये, पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चेतन किया, कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पढ़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक, किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया, जीव ते हां मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला, कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे आओ जीड़ा बिल लाए। फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखण कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए, ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल, क्या मोह देसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए, बिन नदरी नानक नहीं कोय। तनासरी मोहल्ला तीजा, नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे। अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए। हर सुचित लागे तिरकाल ना खाए। रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास, ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे, जिसका जीव तस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए।

पाग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच